किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आनन जाना वेसा, किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरत तन पावे, सूद वैस पर कृत कमावे, मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे।

0: तब गुरु
1: बिजे पूर्व देवना जिसकी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंको मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग कबहू को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंको शिव मुन गहना तजात कबिलास को
0: जंको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप
1: जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी निवाजी सत्संग जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहा। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ, सा तों बाद दूसरा स्वर रे है, उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने, सारे गामा पा, पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे समेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनू पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तिराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इसनू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे डागड़ी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वलो आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहंदे ने कि प्रगट्यो जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज वज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने के मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हों का संबंध जिहड़ा है विसाखी के नाल। छेवें पातशाह ने यह ढाडी पैदा की थे, ते सिख इतिहास को संभालण लई सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लैके दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, और कृपान जो गुरु के सिख लैके खड़े, और मंग कीती कि एक सिर दी लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लईयां ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर दी लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जिहदी 30 साल की उम्र है, जिहदा नां है भाई दया राम, और जिहदे माता का नां शोभा देई और पिता का नां मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह के चरणा विच आके कहण लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर शशोपंज सी कि एक वेर चीज अर्पण की दोबारा भी अर्पण की जा सकती है। कहण लगा, जदों 13 साल की उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम के नाल तुहाडे दर ते आया सा, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे की कि गभरूआ आ कृपान फड के लड़ सकदे। कहण लगा, काम हमारा तोले तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर लै गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए, ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे, पिता का नाम, माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए।
1: बड़ा प्रसिद्ध मनोहर अते सरल राग है। इस राग नूं साधारण श्रोते भी बड़ी सौखी तरह पहचान लैंदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तिलंग राग दे सिरलेख हेठ दो राग प्रकार उपलब्ध हन। बाबर बाणी जिस विच पाप दी जंग, जोरी मंगे दान, रत का कुंगू, अगत पड़े शैतान आदि शब्द हन जो भयानक दृश्य बनाते हैं, पर प्यारे का रायसा होने करके परमेश्वर की लीला समझ जग्यासु भाने विच टिकदा है। इस राग के स्वरूप विच दोनों निषाद रिश्वत दैवत वर्जित अते होर शुद्ध स्वर लगते हैं। वादी गंधार संवादी निषाद इसनू दिन के तीजे पहर गाया जाता है। दिन के तीजे पहर गाउण की परंपरा श्री हरिमंदर साहब जी जो कीर्तन का सोमा है दी पुरातन परंपरा है। इस राग का पहला शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं बीबी जसविंदर कौर जी, रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी, और शब्द दी तुक है मीरा दाना दिल सोच, मुहब्बते मन तन बसे सच साह बंदी मोच। दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी, है तू है तू हो वनहार, अगम आगाद ऊच अपार। पहला शब्द श्रवण करो, मीरा दाना दिल सोच।

कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं. यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा. टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू. यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1,000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak, Bhagat Ravidas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanidh, Mehma Agad Bodh, Namo, Namo, Namo, Namo, Neth, Neth, Neth hai.

परमेश्वर कहायो पट अपने इस शब्द धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं लिखते ने ओ जोत रूप हरि परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरि जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरि उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरुदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी,

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई कालना ना कालनी पवे, इस तरह ने ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी, पर मिली भी कालना करके। गुरु अमरदास हर साल गंगा नहान जाया करते सन हरिद्वार, कई साल जाते रहे और एक दिन

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति।

भाई जेठा प्यार दे नाल घर वाले जेठा क्या करते सन। गुरु अमरदास जिन्हां ब्यासा दे किनारे गोविंदवाल शहर वसाया संगतां दे नाल भाई जेठा भी गोविंदवाल साहब आए सेवा करन लग पे। इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा के गुरु अमरदास जी ने अपनी सुपुत्री पानी दा व्याह भाई जेठा रामदास जी दे नाल कर दिता। गुरु घर दे सेवक ही रहे, जवाइयां वाली प्रौणियां वाली आकड़ नहीं दसती। समा बीतदा रहा, गुरु अमरदास जी दे दो जवाई सन, एक रामा जी एक गुरु रामदास। गुरुगद्दी देण दा समा आ रहा, पर गुरुगद्दी ए निजी जायदाद नहीं, इलाही दात है। एक दिन गुरु अमरदास ने रामा जी ते गुरु रामदास दोनों नु बुला के कहा, भाई दो थड़े बनाओ पर बहुत सोहने बनने चाहिए। सारा दिन ला के रामा जी अते गुरु रामदास ने बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम दे वेले गुरु अमरदास आए, थड़े देखे ते कहन लगे थड़े पसंद नहीं आए, ढा के दोबारा बनाओ। थड़े ढा दिए। दूसरे दिन फिर बड़ी मेहनत करके बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम गुरु अमरदास फिर आए, कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ढा के फिर बनाओ। दूसरे दिन भी थड़े ढा के, तीसरे दिन फिर थड़े बनाए। तीसरे दिन गुरु अमरदास फिर आए ते कहन लगे थड़े अज भी ठीक नहीं बने, इन्हां नूं ढा के फिर बनाओ। तारामा जी खिज के कहन लगे, असां तां थड़े बड़े सुंदर बनाए बड़ी मेहनत दे नाल, पर आप जी नूं पसंद नहीं आंदे। आप जी दी उम्र वडेरी हो गई है, चंगी चीज भी चंगी नहीं लगती। मैं तां इस तों अच्छा होर नहीं बना सकदा, ये कह के चले गए। ते जद गुरु अमरदास ने भाई जेठा रामदास नूं कहा, रामदास थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया, ढा के बनाओ। ता रामदास जी हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहन लगे, दाता साड़ी मत बड़ी थोड़ी है, साड़ी समझ बड़ी छोटी है। सच्चे पातशाह हुणे ढा देंदा ये थड़ा, आप जी जिस तरह हुक्म करो उसे तरह फिर थड़ा बनावांगा, क्योंकि सेवक का काम है हुक्म मनना, जिस तरह हुक्म करो सेवा करांगा। ये है हुक्म मनना, सेवा करनी। हुक्म मनिया, सेवा की, गुरु की खुशी मिली। तो हुण गुरु ने कितनी कृपा की, रामदास नूं उस सिंघासन ते बिठा दिता जिथे आप बैठा करते सन। परिक्रमा की थी और रामदास दे चरना दे आप मत्था टेकिया ते रामदास नूं गुरु रामदास बना दिता। सेवा सिमरन और हुक्म मनन दा ए फल मिलिया कि रामदास गुरु रामदास बन गए, जिन्ना ने अमृतसर साहब शहर वसाया जि
जिते सरोवर बनिया हरी मंदिर बनिया ते जेड़ा भी उसे इशनान करता है जदू भी वो गल कहता है इशनान करता है तो ओदे मुंह तो अपने आप ही निकलता है रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। पर एक गल कह दिया गुरु बन के मन विच हंकार नहीं आया। गुरु नानक साहब दे साहबजादे बाबा श्री चंद गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। गुरु रामदास जी दा दाड़ा बड़ा लम्मा सी ते बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास इन्ना लम्मा दाड़ा इन्नी लम्मी दाड़ी क्यों वधाई। होर कोई हुंदा उहदा जवाब कुछ होर हुंदा पर गुरु रामदास दा जवाब की सी एक हथ दे नाल अपनी दाड़ी फड़ ली एक हथ दे नाल बाबा श्री चंद दे पैर फड़ ले अपनी दाड़ी दे नाल बाबा श्री चंद जी दे पैर झाड़न लग पे गुरु रामदास ते नाले कहंदे ने बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरशां दे चरण झाड़न वास्ते ए दाड़ा वधाया होया। तां बाबा श्री चंद कहण लगे रामदास अगर ए निम्रता साडे विच हुंदी ते असी गुरु ना बन जांदे। पट कह रहे ने ऐसे गुरु किथे मिलनगे इसे वास्ते सारे दर छड़ के इन्हां दे दर आ पए आ। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो हुण गुरु रामदास ने कृपा कीती। गुरु रामदास जी दे तीन सपुत्र सन वड्डे बाबा पृथ्वी चंद उन्हां तों छोटे महादेव ते तीसरे अर्जन देव जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अर्जन साहब कह के याद करते। वड्डे दोनों पुत्र ना सेवा वाल ध्यान ना हुक्म मनन वाल ते गुरु अर्जन साहब जो पिता गुरु ने कहा कहा कदी नहीं मोड़िया और आगे आ सेवा दा सदका ए गुरुगति ए इलाही जोत। हुण गुरु रामदास पातशाह ने कृपा करके गुरु अर्जन साहब नूं बख्श दित्ती। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बयन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नयन। हुण पंजवी जोत गुरु अर्जन साहब गुरगद्दी ते बैठे ने जेड़े प्रमाण पुरख ने ते पट कहंदा है अगर दर्शन करने ने इन अखां दे नाल तां गुरु अर्जन दे करो क्योंकि दर्शन कीते हैं। जन्म मरन सौर जांदा है तुद दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे घटिए। इस बाणी इतिहास तों आप सिख्या लैणी अपने गुरु दा हुक्म मनना सेवा करनी सिमरन करना अपने घर विच अपने मां बाप वड्डियां दा क्या मनना उन्हां दा आदर करना उन्हां दी आग्या विच चलना निहायत जरूरी है क्योंकि कहंदे ने जिन्हें मां बाप दी सेवा नहीं कीती वो कितना भी दान पुन करे वो कितना भी तीर्थां ते जावे वो कदी सफल नहीं हुंदा। मां बाप दी सेवा कीती समझो रब

सदा तेरी आस सबको आस है तेरी बेटा। हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जिड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो, ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल दा ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आयो प्रभ मांगण, तुम पेखत सोबा मेरे आंगण। कर आसा आयो प्रभ मांगण, मैं बड़ी आस करके हे मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी दी आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड़ के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ये ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है?

हे मालिक मैं ए आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा। हुण ए आस ते पूरी ताई हो सकदी है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की आस।

श्रोमणी कमेटी ने अरदास विच लफज दर्ज कीते हुए ने हरमंदर साहब तो ही ये लफज बोले जांदे ने युग आ गया टीवी दा रेडियो दा हर सिख दे घर विच लफज पहुंचदे ने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेता हे मेरे माधो हे वाहिगुरु मैनू उन्हां दा मेल करा जिन्हां नूं मैं मिलां ते पढ़ां ते मैनू तेरा नाम चेते आवे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा करान जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे सी। अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मांजण। बाबा जी कौले मांजदे पे, कोला हाथ च, नाल नाल सिमरन, नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन, नाल नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है, सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नू कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल, ते धन गुरु गोबिंद सिंह। कहंदे अज दीप सिंह एक गल दस।